बेडर तोरा नीला चोला छे फुट जो साला शिके हाथ च तीर ते वांग गात्रे रखिया।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीव नू हर जीवन नू तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे है, अगर जीवन नू नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देश पाश, जो पीछे रह गए पाश देश रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देश रह गए पीछे रह गए। तो मनुख तो पीछे है सारा पशु जगत, और इस पाश जगत देश इस पशु जगत देश चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा कि कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते हैं। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी यौन मने है। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मा तक अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे है, तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नू नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे, दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी तलते ही नहीं, पंछियां देच भी ने, पशुआं देच भी ने, पक्षियां देच भी ने,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते चीते

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਘਰ ਪੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਕਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਸਾਜਿਬ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ
0: ਹਰਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇ ਵਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਵਾ ਨਾ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭਤੀ ਉਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਕਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਕ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਭ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੋ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਤੇਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿਆਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਹੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮਤ ਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਨਾਸੀ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਦਿਸਕੇ ਸਭ ਦਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੀ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਰਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਨਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सवधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजनहार को सत सब होई
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: कर्म करावन तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: रब का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढाकै
0: अपने सेवक की सर पर रख
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम पाई
1: अपने सेवक की आप पत रख
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख
0: भस्म कर एलस कर कोट लख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारे न रख अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: ताहि सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडानी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: अमृत मन तन तरपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: मूर्त बैठ सोभत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रबे अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाई
0: रबे अपने सिव रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रबे अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ बसे हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे तिन की ओट लेहे
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अब सियान पसगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न होवी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण का अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचर
1: सतगुर सिख के बंधन काट
0: गुर का सिख बकार के हट
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बट भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचा सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो इन्हें कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ
0: अनक बार गुर का बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश परम
1: सह सियान पलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चरण गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव तिस लए मिलाए
1: जे वाहे को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन रित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतपुर अपने
0: नानक जिस पर सादा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमृत सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेश वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहुत दुख ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अंत भय दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निर्भव होए बसे
0: सगल व्याध मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: हित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दस सरवन
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने जगत प्रभु आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावन नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरोह पाप सब मीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: निरकर गहो नाम हर वत,
1: एहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित पांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाये,
0: रोग मिटे हर अवखत लाये,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते आ बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: अवबिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाये बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: मत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होए उदार,
0: हर हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाये,
0: मन वंचित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थिर है तन्हा,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनिता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भगत बिना भव डूबे सियाने,
1: भगत की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सब दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाहे,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विसार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें त्यागो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: किन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावरते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच्छपुन्नी श्रद्धा सब पूरी,
0: अब रहे सत्संग हजूरी,
1: जिसका साथिन लिया मिलाए,
0: नानक भगती नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सोको बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जे सब कुछ दिया,
0: सोको बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह राख है,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जन्म जन्म का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत् ए है बुझाया,
0: प्रब अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरी है संसार,
0: भगती धन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों देख दर्श सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दीजै कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शंद दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: हाथ पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो बात धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संग प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगास, श्लोक
1: सर्व

अगर सिमरन ना हो तो दानी महाहंकारी होता, दानी महा बेईमान होता, गुस्ताखी माफ है। बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है। बेईमानी करके धन कमाया, दानी बने होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसनों कहने ने, दानी नो। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए, दानी पाप करके धन इकट्ठा करता है, फिर दान देता है। कहता है मैं धार्मिक कर्म किया, हद हो गई, जिड़ा तू कमाया ही पाप नालों दिता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया। गुरबाणी बहुत गहराई जाती, इतना ना समझ लेना। मैनू कई मिल पैंदे ने गैनी जी, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ किए ने, मैं कह तेरे चेहरे के उत्ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती, एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती, तेरे व्यवहार दे एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती। की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर ले। दान सेवा है, दो दानी लड़ पैंदे ने, दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा है, बड़ा भयंकर वध जांदा है। कुछ गल्लां सामने आईयां ने, मैं नहीं कह रहा, इस वास्ते संकोच करके वापस पे करूंगा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे ना ही मोया साथ ना जाए। बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन इकट्ठा ही नहीं होगा। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते नहीं किस तरह हो सकता, जिहड़ा इकट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देन नाल पुन किस तरह हो गया। सती पाप कर सत कमाए। खैर धार्मिक इकट्ठ, धार्मिक सूझ बूझ नूं पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर दे च प्रवेश उसनों मिलदा है जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे, पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है। इनू बयान करके मैं अगे चला, सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेक बेक को कह न सकत, अरूप है अनूप है। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजहब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए है। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिसके घर दे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं।
सारियां नदियां सागर दी

नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम का संग उधे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी माणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसै सब भले सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुरते पाए सत बचन साधु उपदेश सत ते जान जाकर हृदय प्रवेश सत निरत बूझा जे कोय नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार अवन बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभु कै रंग राज जान रहे गुरु कै भजन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत

मंतन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। अवस्यान पसगली।

पहुंचत प्राणी अगमा गोचर प्रभ निर्माणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किनै न पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ।

बसे सगल ब्याद मंगते खै नसे जिसका साथ इन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही।

ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाव बिन सह पूर्ण होयास भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसाए अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म।

अब है मूर्ख मना सोत मीत कुटंब अरबंता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लेहे याने।

नेत्रों पे एक दर्श सुख होए मन विकसै साध चरण तोय भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावै संग एक वस्त दीजै कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल।

जब अकार एहो कछ न दिष्टेता, पाप पुन्न तब कहते होता। जब धारे अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्क सोग।

नहीं तब बंद मुक्त कहो किसका होगा नहीं। जब एक है हर आगमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै।

जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन।

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपै प्रवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन, जब अपने आप उतारै, तो सगन अपसगन कहां विचारै, जय अपने ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप, जय अचल अछेद।

सिर उपर ठांडा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रमाण, अंतर्जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सो हो

हस्तपदी संत संग अंतर प्रभ डिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दिष्टा है नौ निध अंगमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माह चार कुंट दै दिसे समाह इसते पिन नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत तार रहे स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनै शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब।

लखी नहीं जाए, जिस पावे तिसलय मिलाए, कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वर्त।

मद अलिप्तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इसते होए सो नाही बुरा, उरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत आत्मिक की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसरे होए ता सुझ ही पाए, इसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।

खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाई परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर

हमारी। प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान।

सर नहीं परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते उच्चा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखै सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्तन कौ तन तेरो नाव, निथावे कौ नाव तेरा थाव। निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटा कौ देव दान। करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जान हो आपे, आपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्त तुमते होए, नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम में उद्दम पला, हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जेहे काट।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिंतु साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्नि मह जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख पया बैठ कौ दैन, एहु निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लेहो तौ नानक सीझै, जे प्रसाद तार ऊपर सुख बस है, सुत प्रात मीत बंता संग हस है, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जे प्रसाद भुगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना, तिसह त्याग अवर संग रचना, ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे, आदि अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नवनिध पावे, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसह बिसारे मुग्ध अजान, सदा सदा यो फूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मान, जो होवन सो दूर परान, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै तोय, गर्दभ प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात, बाहर पेख अंतर मल माया, छपस नाहि कछ करै छिपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अग्न बाहर तन स्वाह, गल पत्थर कैसे तरह अथाह, जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओढ़ निबहावै, कहां बुझारत बूझै डोरा, निस्कहियै तौ समझै पूरा, कहां बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहां उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सो आवै ना चीत, जो बैराई ता स्यों प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसै, अनंत केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मानै मनह प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह चूर।

अमर है जिसके अंतर बसे निरंकार, इसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता, करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप मान, आप है आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म।

नानक प्रभ शरणागते कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ते अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिस कौ सिमरत परमगत पाव है जे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कत अबर लुभाव है जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब तरगह मान पाव है नानक पत से ती कर जाव है जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला हो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत

मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तुहा चार व्यवहारी, तिस प्रभु को सासा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुन है करन नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभु को मूल न मन हम विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, मेरे मन मूड़ तू ताका जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, इसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्वनिधान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन्हू लया। जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जिना की आचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटे सो ज्ञान। साध कै संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिले, साध कै संग सदा प्रफुल्ले। साध कै संग आव है बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कथहू पावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान।
ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक ज्यों वसदा को खोदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तर उपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मनमा है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

बिन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओं जिद जिद कर रख है तैसा तिन्नाओ आपे कर्ण करावन जोग प्रपावै सोई फुन होग पसरे आप होए अंत तरंग।

कई कोट पए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौहिर है, कई कोट पर दुख ना कर है।

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरक निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण।

कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट कीने बपात प्रपते होए प्रभमा समात ताका अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत्व के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पहे सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समाव है अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही को नानक तिस बलिहारण है

सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर किरपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै त्रिण समान कछ संग न जावै बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटाय अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कूट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह कौ कैसे गवे आपस कौ जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कौ नानकता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मग्न संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख को उठतावै तृप्त आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावै खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए

जैसी दृष्टि करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझे आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करना हार। उसते पिन कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोए। अपने चलते आप करना हार, कौतुक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किने बख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना। पला पला पला ते

जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सीझया, गुरप्रसाद तत सब बूझया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। न किस जन्म न किस मरै, अपन चलत आप ही करै। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रच थापियो थाप। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप ज पाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख बिसारन। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप भय निहाल। उनकी सेवा सोई लाग है, जिसनो कृपा करह बड़ भाग है। नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख का उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाए हो वैसो होए, करनै हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहि समाए, ओए सुख निदान उन्हों।

मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसके दर्श सब पाप मिटाव है, अवस्यान पसगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के

ऐसा गुर बड़भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने

ठंड आहर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाव बिनसै पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी अत विचार कह जन साचा जन्म।

ताब है मूर्ख मना, सोत मीत कुटंब अरबंता, इनते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, आस हस्ती रथ अस्वा।

निरपेख दर्श सुख होए मन विकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजै कर माया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए तब बख्शंद दीन दयाल भगत।

अस्पदी जब अकार एहो कछ न दिसटेता, पाप पुन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग

प्रभु केवल तनी तब बंध मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हर अगमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सक्त कहो कित ठाए जब आप अपनी जोत तरै तब कबल निडर।

जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे प्रवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उतारे तो सगन अपसगन कहां।

जय अचल अछेद अभेद समाया, उहां किसह व्याप्त माया, आपस को आपै आदेस, तेहु गुण का नाहीं प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तै कौन चिंत किस लागै चिंता, जय अपने आप आप पतियारा, तै कौन कथै कौन।

साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रभ एको नेरा मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो हलत पलत दो लेहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहि नानक बहुर न आवै जाहि तिस ते दूर कहां को जाए उबरै राख।

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अंगमत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहे।

हेम कुशल सहजानंद साध संग पाई परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बा

सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोक है निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। सन जो

हमारी। प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बौर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसह प्राप्त होए, खेम सांत रिद्ध नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, एह फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते यम ते छुटै, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अंग

क्रोध ते असीम क्रोध संतुलत खो देंदा है। असीम क्रोध तवाजन डावा डोल कर देंदा है, मनुख नूं पागल बना देंदा है। हां जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उसते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकता, ये पूर्ति वक्ती आउंदी है, आरजी आउंदी है। इस वास्ते मोह छिन मंगर हो जांदा है, प्रेम टूट जांदा है। रिश्तियां दे च रोज दराड़ां आउंदियां दिखाई देंदियां ने, मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकता, हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं कीती जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नु शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार जिथे अतृप्ति उथे क्रोध, यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नूं आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज करदे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहने मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखदे हां असीं सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पए ने, उपर नहीं मोती मिलते, किनारे ते नहीं मोती मिलते। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदिया उसनु नौ खजानिया दी प्राप्ति हो जाएगी, नौ दा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ने गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह, तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है, ओ दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, त्रिपत हो जांदा है। इसे नूं ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहिंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है, जमीन नालों तीन हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है। इतना वड्डा पसरिया होया फैलिया होया ए सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरिया होया पानी, समुंद सह सुल्तान, इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे,
ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੋਵਨ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਤਨਾ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਨੇ ਤੇ ਰਤਨ ਹੋਵਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਛੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀੜੀ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਜਤਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਤੇ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਸ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਸਫਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਿਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਕਦਮ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੋੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੋੜਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਸਰਨਗੇ, ਮਹਾਨ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਜ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ। ਮਹਾਨ ਉਸਾਰੂ ਬੋਲ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਆਮ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਬੋਲ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
पर अजे भी पूरा मन विच उतरिया नहीं गया। हुण होर डुबकी लानी है, तह विच पहुंचना है, जिथे मन दी दुनिया मिट जांदी है, खत्म हो जांदी है और परमात्मा दी दुनिया शुरू हो जांदी है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे कोई होर अंदर प्रवेश करता है, होर गहराइयां विच जांदा है और गहरे जान दा इक्को ही तौर तरीका है जप, तो समाधि लीन हो जांदा है। सुन समाद अनहद तैनात, कहन न जाई अचरज बिस्मार। महान बिस्मादी अवस्था उसकी बन जाती है, परम आश्चर्यता प्रकट हो जाती है और अफुर अवस्था उसकी हो जाती है। तमाम फुरने शांत हो गए, सारी भज दौड़ मिट गई। उस नेचल बिंदु नाल जाके जुड़े है जिसनु परमात्मा कहंदे ने, जिसनु ईश्वर कहंदे ने, जिसनु परम व्यापक शक्ति कहंदे ने। बस उस तक पहुंचदे आ इस समाधि लीन हो जांदा है। और ऐसी समाधि जिहड़ी फिर कदी भंग नहीं आउंदी, ऐसा सिंघासन जो कदी कोई खो नहीं सकदा, ऐसी बुलंदी जिस विच मनुख फिर कदी थल्ले नहीं आउंदा, इस तरह दी अवस्था नूं कहंदे ने कि इस नूं समाधि नसीब हो गई है। समाधि तक पहुंचे होया मनुख उदी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधान ही समाधान। जितने चिर तक समस्यावां ने उन्ने चिर तक समाधि किथे, उतने चिर तक ते चिंतावां ने चिंतन नहीं है, उतने चिर तक ते कोई ना कोई कामना है काम है राम किथे, उतने चिर तक कोई ना कोई छोटी मोटी झलक लोभ दी चलदी रहंदी है और कोई ना कोई बिंदु अहंकार दा बनिया रहंदा है समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के मन दी दुनिया तो पार हो के कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। हुण जो कुछ हो रहा है जैसा हो रहा है सब कबूल, दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नू बहा लेंदा है, विरोधता नहीं करदा। ऐ दरिया जिस पासे हुण तू ले जाना है मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दिच तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टूटेगा थकेगा। और दुनिया दिच ऐसा ही हो रहा है, बहाव दे नाल अपने आप नू बहा लेना, इसे नू कहंदे ने रब दी रजा दे च इसने अपने आप नू जोड़ लिया। जिधर रब रजा है वैण ते दाऊ गौ करे, जिस पासे हुण रब दी रजा है बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नू तोड़ दिता है, जिंदगी नू छोड़ दिता है ईश्वर दे आसरे ते प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदियां करदियां गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा, खोजदियां खोजदियां मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन खोराज अभय भगतें जन दियो।

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

रामचंडी राग के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों तेन जागता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वकत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। अर्थिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नू कौन जानता है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष दे कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां की अंश भी है, पिता की अंश भी है, पुरुष दे कणु भी हैं और नारी दे कणु भी हैं। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि उसके अंदर पुरुष दे कण ते पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ग हम और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी दे कण ते पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ग हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल नूं ते तस्लीम किया कि बाहर दी ए नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल सी, उसने ये गल अंदरों ते तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ग अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी दे अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ग अंग है और नारी करके पुरुष अर्ग अंग है, अर्ग अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ग अंग बाल की कशिश पैदा करता है, पुरुष दे अंदर नारी की कशिश, नारी दे अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जी संपूर्णता है एक पशुओं की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये को सोचनी है, ये को विचार ने, तो इस समाजिक रकम धर्म के दायरे चला की आग्या हो, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी की लगे और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ग अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमत विच यह नाम रखा गया है आनंद कारक, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहे हैं। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, एक पुत्र भी है, एक पड़ोसी भी है, एक दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है।
और फिर किसी रीत से पत्नी। सारे रिश्तों में पकियाई होवे, पवित्रता होवे, इस वास्ते विचोला चाहिदा सी। तो विचोला गुरु गुरु मोड़ लांदा है कि मनुख पुरश भराव बने ते चंगा बने। लोकी मान करन के भराव होवे ते ऐसा होवे, एक पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने, और एक पुत्र बने ते ऐसा के मां बाप फकर करन, एक दोस्त बने ते ऐसा के दोस्त उससे मान करन, और एक पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने, उसकी खुशी बने। हू बहु इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी, कि बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन, कि साडे घर का बिछड़िया होया फुल सी पहले महक वंडी पेके कर दे, हूँ महक वंड रही है सौरे कर, और मां बाप की खुशी बनी रहे, महक फैल रही है खुशबू फैल रही है। एक पत्नी बने आदर्शवादी, एक भैन बने महान, बड़ा मान करन, भैना मान करन। सारे रिश्तों में पकियाई से पुख ही ये लाजमी है। एक पत्नी होवे तो ऐसी ही कि सारिया ही खुशियां का सोमा बन जाए पति, और पति मान करे। तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे, किसी महान नाल संबंध जोड़े, और इन्हों दो आत्मावान के संगम, इन्हों दो शरीर के संगम में कोई मदद चाहिए है। जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हाँ, दोहां नूं जोड़ना है तीसरा चाहिए, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए है, दो कपड़िया नूं जोड़ना है, कोई धागा चाहिए, दो इटा नूं जोड़ना है, तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है, दो लकड़ा नूं जोड़ना है, श्रेष्ठ किल कुछ ना कुछ है चाहिए है, दो दिलों नूं जोड़ना है, इत्थे दो दिल जोड़ने, दो विचारां नूं जोड़ना, दो ख्यालां नूं जोड़ना, तो कोई तो चाहिए है, बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नूं इक करदा, दोहां ते मोर लांदा है। ते हुण मैं दो मिनट आपदे होर लवां ते समाप्ति करां। रिश्ते दुनिया दे दो तरह दे, खून दे रिश्ते, ख्यालां दे रिश्ते, विचारां दे रिश्ते, मन दा रिश्ता। जिहड़े खून दे रिश्ते ने, इन्हां दीआं प्रणालियां तिन ने, नानके दादके सौरे। बे खून दा रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सौरियां, पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नूं जिथों जन्म मिलदा है पति पत्नी तो, ये रिश्ता खून दा रिश्ता नहीं है। बच्ची किसे घर दी, बच्चा किसे घर दा, खून ते इक नहीं है। किस तरह किया जा सकता खून इक, ये खून एक नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भी नहीं मने। सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलों की सांझ है, विचारों की सांझ, एक जो दोए मूर्ति बन फिर कहिए सोए। महाराज कहते ने असी पति पत्नी उसनू कहने, विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो, ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने। पर इतनी गल स्पष्ट है, जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही, वरना नहीं। जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होता है, और जिथे प्यार है उसते एतबार भी आता है, एतबार भी मनुख का उथे नहीं जाता। और जिथे एतबार है कहने सदाचार का वासा भी उथे ही है, और जिथे सदाचार है करतार दिया सारिया बख्शिशा भी उथे, करतार दिया सारिया न्यामता भी उठे ने। आप सारे सियाने बैठे हो, बच्ची बच्चे भी ऐ बिताने सियाने ने। ये रिश्ता विचारों की सांझ का है, ख्यालों की सांझ का, एक जो दोए मूर्ति
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌਰ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਏ ਮੋਗ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਤੀ ਹਨ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਤੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਤੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ

गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणों में सब दुख हरो

0: सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगता सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।